0: केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाउ लेकर वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ ईयर।
6: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना।
7: रिमूविंग इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कंट्री इज अ कमिटमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ डेमोग्राफिक चेंज कमेटी। दिस हाई पावर्ड कमेटी विल एग्जामिन द रीजन बिहाइंड द डेमोग्राफिक चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस अक्रॉस द कंट्री एंड लुक इनटू द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इट विल आल्सो कंसीडर वेयर देयर इज अ नीड टू ब्रिंग एनी न्यू लॉ रिगार्डिंग दिस इशू।
6: बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
5: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Dobhal called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Dobhal said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
8: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for.

FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुबह 8:30 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं हूं आपका रेडियो मित्र अतुल। मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। आज फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में बात करेंगे रिश्तों की। जी हाँ, जिस तरह पौधों को पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह रिश्तों को प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान और साथ चलने का विश्वास और भरोसे की जरूरत होती है। अपने रिश्ते में ईमानदार रहिए और साथ साथ मुस्कुराते हुए चलिए। प्यारा सा गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। यादगार फिल्म का गीत है, नूतन और मनोज कुमार पर फिल्माया गया है। गीत लिखा है इंदिवर ने।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अभी आपने यादगार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सुना। अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं और फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। बहुत सारे फरमाइशी पत्र कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम तक पहुंचे हैं। श्रोता चाहते हैं कि हम उन्हें शामिल करें, बिल्कुल शामिल करते हैं। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन के साथ परिवार के सदस्यों ने गीत सुनना पसंद किया है। आदर्श नगर मलोट राज शर्मा से, क्षमा कीजिए, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मोंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य गीत को सुनना पसंद करते हैं। अमलेश्वर से महादेव घाट, अमलेश्वर से पत्र आया है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश का, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर के साथ उनके परिवार के सदस्यों का। भाटापारा दंतगिरी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके परिवार के सदस्य, मित्रजनों, क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागण इस गीत को सुनना पसंद करते हैं। और इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कमलगन शिवपुरी से फरमाइश आई है नितिन शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद और फरमाइश पर कार्यक्रम का एक प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनवाने से पहले रिश्तों की बात हम कर रहे हैं और रिश्तों में बहुत संभल कर चलना होता है, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा और हमेशा एक दूसरे के लिए तत्पर और तैयार रहने का संकल्प रिश्तों को मजबूत बनाता है। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद के कुछ गीत, और साथ साथ बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, नाजुक होते हैं, इनके संभाल कर रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अपने रिश्तों का ख्याल रखिए और उनको कभी बिखरने मत दीजिए। बहरहाल आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर। वंदा नगर एयरपोर्ट रोड से गरीब नवाज कॉलोनी से ये पत्र आया है, और पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग, प्रथम और परी के साथ उनके मित्रजन गणेश, कार्तिक, नारायण और अन्य श्रोतागण इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र हम तक भेजते हैं। इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ एडुरम थाना वंदनगर इंदौर से पत्र आया संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मालती चौधरी, गणेश, रंजना और उनके परिवार के सदस्यों का। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया और परिवार के सदस्य सुनना पसंद करते हैं। साथ ही इसी गीत को न्यू ब्लॉक शिवपुरी से सुनना पसंद किया है देव कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, गायत्री जैन, मनोरमा जैन और उनके परिवार के सदस्यों के साथ दीपिका जैन और कृतिका जैन के साथ उनकी मित्रजन और क्षेत्र के हमारे अन्य श्रोतागण। तो आइए आप सबकी पसंद और फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का तेरह संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 MHz पर और सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज हम आपको सुनवाते हैं दो अलग अलग कलाकारों से लोकगीत। सबसे पहले आप सुनिए ब्रजेश कुमार यादव और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे द्वारका प्रसाद कुशवाहा के गाए हुए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, और लोकरंग के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे थे द्वारका प्रसाद कुशवाहा और ब्रजेश कुमार यादव के गाए हुए कुछ लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर, और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्रस्तुत है आप सबकी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। में हूँ आपका रेडियो मित्र अतुल, मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आप सबके पसंद के गीतों के साथ, और बहुत सारे फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचते हैं, कार्यक्रम में अपनी फरमाइशें भेजते हैं और हम उन पत्रों के माध्यम से आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। आइए आज के इस फरमाइशी कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। विवेकानंदपुरम फिजिकल क्षेत्र से ये पत्र आया है, हरिवल्लभ शर्मा, रेखा शर्मा, रिंकल शर्मा, टिंकल शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का। श्रीराम कॉलोनी शिवपुरी से पत्र भेजा है आभा भार्गव, प्रमोद भार्गव, प्रांजल भार्गव, दीक्षा भार्गव और उनके साथ बेबी भार्गव और परिवार के सदस्य, मित्रजन और उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे अन्य श्रोतागण। गौतम विहार कॉलोनी शिवपुरी से फरमाइशी पत्र भेजा है अशोक कोचेटा और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में नवाब साहब रोहट शिवपुरी से पत्र आया है, अजय खेमरिया, गुंजन खेमरिया, विनोद खेमरिया, मनोरमा खेमरिया, शरद खेमरिया और पूजा खेमरिया के साथ उनके परिवार के सदस्य और मित्रजन। अभिषेक शर्मा, दीपक शर्मा, अरुण शर्मा, मनोज शर्मा, गायत्री शर्मा, दीपिका शर्मा और राधिका शर्मा के साथ उनके परिवार के सदस्य इस गीत को सुनने की फरमाइश के साथ ये पत्र भेजते हैं घोसीपुरा कमलागंज शिवपुरी से। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश के साथ विपिन शुक्ला और उनके परिवार के सदस्यों ने गीत सुनने की फरमाइश की है विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से। इसी गीत को सुनने की फरमाइश ब्रज दुबे ने की है और पत्र भी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से आया है। विवेकानंद कॉलोनी से एक और पत्र आया है शारदा पाराशर, पंकज पाराशर, नवीन पाराशर और उनके परिवार के सदस्यों और मित्रजनों का। विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से सुनील शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने भी ये गीत सुनने की फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद और फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। और आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हम अगला कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे अपने भोपाल केंद्र से। कार्यक्रम का नाम होगा जिले की चिट्ठी। कृपया

भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख है नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। ग्वालियर जिले के लिए यह महीना मिला जुला रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का शुभारंभ करने भी पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़कर प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में पशुओं के केयर एंड वेलनेस सेंटर खोलने, पशु स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र का उन्नयन करने और डबरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथिगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ऋषि गालव विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण मध्य भारत शिक्षा समिति के द्वारा ग्वालियर जिले के बेला गांव के अंतर्गत लगभग 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा से यहां शैक्षणिक सत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण विश्वविद्यालय 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने शहर में चल रहे जनगणना कार्य का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तुस्थिति को जाना। गौरतलब है कि बीते 1 मई से शुरू हुई जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हाल ही में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया। इस श्रमदान कार्यक्रम के तहत लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजनों ने एक साथ तलैया की सफाई में अपना योगदान दिया। ग्वालियर जिले में भी भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था से नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया गया है। साइबर तहसील 2.0 वर्तमान में जिले की सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। वहीं जिले के विकास खंड घाटी गांव की ग्राम पंचायत आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के तहत यहां बने कोलीझोरा तालाब ने यहां के 50 हेक्टेयर बंजर नुमा सूखे क्षेत्र के रकबे को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। अब इन खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40 केंद्र संचालित हैं। 22 मई तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 7,448 किसानों से 9,97,494 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।

0: बीते दिनों प्रदेश के जल संसाधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पेयजल प्रबंधन के साथ साथ जनहित के अनेक मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने संत योगी हुजूर मालिक साहब के जीवन पर आधारित पुस्तक दिव्य चरितामृत का विमोचन किया। आध्यात्म निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के भी उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता संत कृपाल सिंह ने की। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर हुए शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाओं को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की नौकरी दिलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में शक्ति दीदी के तहत पहले से ही 112 महिलाएं ये भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही हैं। पिछले दिनों ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने जायजा लिया। गौरतलब है कि गाय के गोबर से सीएनजी बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र में यह प्रदेश के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आदर्श गौशाला लाल टिपारा ने गौवंश के प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर व कचरे से वायु गैस उत्पादन कर देश प्रदेश के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्वालियर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक फैसलों तथा सरकारी और जनहित से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सीधे आपके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कलेक्टर ने हाल ही में इससे संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया है। ग्वालियर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख था नवीन श्रीवास्तव का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्वालियर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम में बाबुल सुप्रियो को सुगम संगीत का ये कार्यक्रम है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम इस गीत के साथ यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचा रहे थे बाबुल सुप्रियो के गाए हुए कुछ गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: अरे ओ छोरी,
1: क्या
0: मिलने आती है चोरी चोरी, और सारे गांव के सामने करती है सीना जोरी।
1: ये आंखें किसको दिखाता है रे तू?
0: आंखें, अरे आंख लड़

0: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके क्या साबित होगा, कभी औरों के दर्द को समझना भी जिंदगी है। इसी सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार। जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम संदलपुर से।
0: अच्छा, आवाज कम आ रही है, चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं अब। ठीक है, जी बताइए।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: हाँ जी, किस फिल्म का गाना सुनना है और कौन सा गीत के बोल बताइए।
1: पिक्चर गाना लता की आवाज में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: छोड़ दे सारी दुनिया, ठीक है।
1: हाँ, पुराने गाने पसंद है मेरे को।
0: जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं पान की खेती करता हूँ। देसी पान होता हमारे गाँव में, संदल पर माधरी पास गाँव, मेरे ग्वाली के पास में।
0: जी, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी पसंद का गीत।
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ, गाना सुनना चाह रहे हैं मेरे सामने साहब लोग।
0: जी बिल्कुल, उनसे कहिए, फोन करेंगे तो हम बिल्कुल उनकी फरमाइश शामिल करेंगे।
1: नाम बोल देना, मैं नाम बता रहा हूँ।
0: जी, दो नाम बता दीजिए जल्दी से।
1: मरार से, गुड्डू मिश्रा, संतर मरार से।
0: हाँ जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: नमस्कार बहन जी।
1: जी कौन बात कर रहे हैं बताइए, अपना नाम और अपनी पसंद भी बताइए।
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा है।
1: जी, मांगीलाल जी स्वागत है आपका, बताइए कैसे हैं आप।
0: बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ,
1: जी
0: और इस वर्ष से यही आशा करता हूँ कि हमारी दीदी भी ठीक है।
1: जी बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं तभी हम इतने स्वस्थ हैं, मस्त हैं और
0: जी
1: आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं।
0: जी
1: जी बताइए, दुआएं तो हमेशा काम करती ही है मांगीलाल जी, बताइए है ना।
0: सही है, दुआ ही सबसे बड़ी बात है, दुआ बहुत
1: जी,
0: बड़ी चीज है।
1: एक बार दवा काम करना चाहे भूल जाए, लेकिन
0: भूल
1: दुआएं
0: जाए
1: कभी
0: लेकिन
1: न
0: दुआ नहीं
1: कभी, जी
0: भूलेगा।
1: दुआएं कभी न कभी जरूर काम करती
0: सही
1: हैं।
0: है
1: जी
0: लेकिन इंसान को सच्चे दिल से देना चाहिए।
1: बिल्कुल, तभी तो वो जल्दी भी
0: हाँ
1: होती है, जो सच्चे दिल से दी जाती है वो बहुत
0: जी
1: जल्दी भी परिणाम देती है हमें।
0: सही है बहन
1: जी
0: जी।
1: मांगीलाल जी बताइए, कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
0: बहन जी फिल्म का नाम तो है तलाश,
1: जी
0: आज क्या जुनिली आत्मा।
1: बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बहुत
0: हाँ बहन जी बढ़िया
1: पुरानी।
0: है पुराना गाना, और मैं भी आकाशवाणी भोपाल का बहुत पुराना और नियमित श्रोता हूँ।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: दमोह से कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी तो बताइए।
1: मल्थुराम केवलारी अहरवाल।
0: अच्छा जी, अब अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए।
1: सुना दीजिए, देख देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
0: अच्छा, क्यों आप इतने निराश क्यों हैं?
1: हाँ, मैं राष्ट्रीय गीत सुनता हूँ सर, श्रीमान जी अच्छे अच्छे हाँ तो सुनता हूँ आकाशवाणी से,
0: जी,
1: और आज से नहीं, मैं 85 से सुनता चला आ रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमें सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आप 1985 से तो सुन ही रहे हैं, तो और रेडियो भी अपना जो सफर है वो 90 वर्षों का सफर अभी हाल ही में जून में पूरा करने वाला है, और आप हमारे इतने
1: हाँ,
0: पुराने पुराने
1: आज
0: श्रोता
1: श्रीमान
0: हैं।
1: जी, मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर पकड़ पाया है आज, और मैंने अभी 4-5 बार लगाया भी है, नंबर तो लगा लेकिन उठा नहीं है, लेकिन
0: जी, क्योंकि समय नहीं
1: मैं
0: हुआ
1: सोचता
0: होगा।
1: था कि यार नंबर उठ नहीं रहा है। हाँ
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया, बहुत अच्छा लगा, और
1: जी,
0: इसी तरह कोशिश करते रहिए और कार्यक्रम में अपनी पसंद हमें बताकर हमें भी
1: हाँ
0: खुशी दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार। कि
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए।
0: कहते हैं नजरों से चाहत का इजहार करते हैं, और हम प्रेमी आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को बेहद प्यार
1: प्यार
0: करते हैं और
1: करते हैं
0: बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, तो आपका स्वागत है। हमारा भी बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी हम शायरी सुने हमको।
0: और कहते हैं खुदा करे किसी से फिदा ना करे, और फिदा करे तो फिर जुदा ना करे। मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका जाना पहचाना चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार ईडन गार्डन अशोक वाटिका कल्पा से बोल रहा हूँ।
1: जी, आपका स्वागत है महमूद जी। अब अपनी फरमाइश भी बताइए, क्योंकि आपकी ऐसी रंगीन शायरी से हम और हमारे श्रोता तो गदगद हो गए, खुश हो गए। अब हम आपको खुश करना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनाकर।
0: समझ लो कि ईद तो है ही, आज ईद उल अजहा का त्योहार है, और समझ लो एक ईद और हो गई, आपसे बात हो गई तो।
1: जी, तो मुबारक हो आपको ईद की, और इस मुबारक मौके पर आपके लिए क्या पेश किया जाए, बताइए।
0: हाँ, बस गाना सुनना है मैडम जी, थोड़ी सी बात हम कहें कर लें सभी श्रोता बंधुओं को, हिंदुस्तानी जितने हमारे देशवासी हैं सभी को दिल से जो है तो नमस्कार और मुबारकबाद, और आप पूरे स्टाफ को
1: जी, शुक्रिया
0: जी। और ज्यादा श्रोताओं के नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है, बस प्रेमदास बाबा जी के नाम रहेगा और गाना रहेगा। अब गाना आप वही सुनवा दो, तीसरी आंख का अगर मिल जाए तो बहुत सही रहेगा।
1: बोल बता दीजिए।
0: गीत के बोल हैं,

0: जाए और गीत अब शामिल करिएगा। और
1: जी
0: मैं
1: जी
0: बता दूं, यहाँ शीत लहर का प्रकोप जारी है क्योंकि सतना जिले के कल्पा में।
1: शीत लहर चल रही है।
0: हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे चारों तरफ से घेरे हुए हैं बिल्कुल, और
1: बहुत
0: नदी नाले
1: खूब,
0: चारों तरफ से पानी का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए जो है हल्की फुल्की ठंडी महसूस होती है।
1: बहुत खूब। आप खुश नसीब हैं कि इतनी गर्मी में आपको इतना ही शीतलता मिल रही है
0: जी मैडम
1: चांदों।
0: जी, गीत आप शामिल करिए, काफी दिनों में लगा, 15-16 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद ही लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद बिल्कुल आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद,
0: जी, नमस्कार दिल से।
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम। सुमत
1: मंडला से कौन बात कर रहे हैं?
0: कुमार जैन
1: जी शेमत
0: जी, रिटायर्ड शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ पिंडरी जिला मंडला से।
1: जी। शेमत कुमार जी, आप रिटायर्ड हैं, आपने बताया, आप शिक्षक भी हैं। कौन सा विषय पढ़ाते थे आप?
0: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस।

0: तो
1: जी
0: आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते थे या हिंदी माध्यम में?
1: हिंदी माध्यम में पढ़ाया था मैंने, सरकारी
0: बहुत
1: स्कूल में था।
0: जी। तो आप, और क्या आपके शौक है? अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब आपकी कैसी है जीवन शैली?
1: बढ़िया जिंदगी कट रही मैडम, अभी तो हम गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये भी अच्छी
1: और
0: बात है कि कोई सर्दियों का आनंद लेता है, लेकिन गर्मी भी अपने आप में जो है एक ईश्वर का ही तत्व है, तो उसे भी हमें आनंदित होकर ही स्वीकार करना चाहिए ना, शिकायत क्यों करें। जी
1: मेरे
0: बताइए।
1: को सुना दीजिए मैडम, क्रोधी फिल्म का,
0: कौन सा गीत है?
1: क्रोधी फिल्म का गाना है वो, क्या कहती हैं, बहुत अच्छा गाना है मैडम, अभी कोई भी सुना दीजिए क्रोधी फिल्म का।
0: चलिए ठीक है। इसमें एक वो मसीहा आया है गीत भी है, और एक और है रेखा जी और धर्मेंद्र जी पर फिल्म आया हुआ, तो हम
1: हाँ
0: आपको
1: उर्वशा रवि का सुना दीजिए
0: जी
1: आप।
0: जी तो हम आपको सुनवाते हैं क्रोधी फिल्म का ये गीत। शुक्रिया।
1: जी जी धन्यवाद मैडम।

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मवी जिला इंदौर।
1: विवेक व्यास जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी
1: कैसे हैं आप बताइए।
0: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैडम?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे
0: और
1: बात हो
0: ठीक,
1: रही है।
0: और ठीक ठीक तो क्या है, बस आपके प्रोग्रामों की ठंडक पे ये दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि हालत बड़ी खराब है गर्मी के कारण अपन सब की,
1: जी,
0: है
1: तो
0: ना?
1: गर्मी में जो है हम अपना ध्यान किसी और तरफ केंद्रित करके और आनंद ले रहे हैं कि गीतों के साथ
0: जी
1: में गर्मी हमें कम महसूस हो रही है।
0: हाँ, ये तो आपकी बात सही है, जैसे
1: जी
0: हमारा ध्यान आपके प्रोग्राम में रहता है
1: तो गर्मी
0: तो,
1: का
0: और
1: एहसास नहीं
0: आपकी
1: होता है।
0: जी, और आपके मुझे आपका एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, बात मतलब
1: बात
0: आपकी
1: आपकी, गीत
0: बात हमारी
1: हमारे।
0: गीत आप ऐसा कुछ है ना। हाँ
1: बात आपकी, गीत
0: तो
1: हमारे। जी
0: जी, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फोन करके गीत सुने तो कह रहे हैं ये अपनी जगह पर। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि आज रिकॉर्डिंग कौन से प्रोग्राम की है।
1: आज फोन करें गीत सुनने की है।
0: अच्छा, तो मैं अपनी पसंद का गाना बताऊँ, आप सुनवाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कब से पूछ रहे हैं आपसे,
0: जी,
1: बताइए।
0: तो आज देखिए, आज महबूब खान की पुण्यतिथि है, तो मुझे मदर इंडिया फिल्म का गाना सुनवा दें जो मन्ना डे की आवाज में है, और इस गाने में एक बड़ा अच्छा संदेश है। वो गाना है कुछ इस तरह से है कि उमरिया घटती जाए रे,
1: जी
0: उमरिया घटती जाए। इसमें मैडम एक लाइन आती है,
1: हाँ,
0: काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए,
1: बा हाँ हाँ
0: है ना?
1: हाँ
0: तो ये गीत
1: जी
0: मुझे सुनना है, और आपका नाम भी मुझे जानना था, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल के सभी अनाउंसरों की आवाज इतनी अच्छी है कि हमें सभी की आवाज एक जैसी ही लगती है।
1: जी
0: जी
1: बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सभी को बिल्कुल समान रूप से देखते हैं और सुनते हैं, और आज
0: और
1: आपकी
0: आपको
1: बात।
0: एक बात और मैं बताऊं कि मैं जॉब है मेरा यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं रहने वाला वैसे भोपाल।

0: हूँ कोटला सुल्तानाबाद का।
1: जी,
0: जी
1: तो आज आपकी बात हो रही है आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका से।
0: अच्छा प्रियंका जी,
1: जी, तो विवेक जी आपका
0: ओ
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना
0: जी
1: अच्छा संदेशात्मक गीत चुना है सुनने के लिए, तो आपकी ये
0: जी
1: पसंद और ये संदेश आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ, आपके पास और अन्य श्रोताओं के पास।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपना बहुत ध्यान रखें गर्मी में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये आपसे
1: जी
0: निवेदन है।
1: जी
0: ओके,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी दीदी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे। धन्यवाद
0: अरे मनोज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी एकदम सही और स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल खरी खरी है ना? क्या कर रहे हैं मनोज जी इन दिनों, आप बताइए।
1: बिल्कुल दीदी, कहें कि अपने शॉप पर काम कर रहे हैं और इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही है, तो इससे भी
0: जी,
1: बचाव कर रहे हैं कहें कि।
0: नौतपा भी चल रहा है तो और भी गर्मी विशेष है अभी तो इन दिनों में, है
1: बिल्कुल सही आवाज।
0: ना जी? तो अब बताइए, आप अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको तो लगभग 8 से 10 घंटा शॉप पर बैठना पड़ता होगा।
1: बिल्कुल दीदी सही है। क्या है दीदी कि जब मैं सुबह शॉप शॉप पे आ जाता हूँ तो दिन में जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल भी दिन में धूप में निकलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इमरजेंसी जैसे कहीं जाना हुआ तो पूरी बहन के कपड़े हुए और एकदम कान को बांध कर एकदम पूरा पैक होके ही घर से

0: निकलता हूँ मैं। और वैसे तो सुबह शाम जो काम है वो ही सुबह शाम कर लेता हूँ दीदी। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि धूप से अगर बचना है तो दिन में बिल्कुल ना निकले, और
1: जी
0: अपने जो छोटे बच्चे हैं और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं,
1: बुजुर्ग
0: खास
1: हैं।
0: तौर पे उनका अगर अपन विशेष ध्यान रखें तो कुछ सही है दीदी।
1: जी बिल्कुल, गर्मी में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सर्दियों में रखते हैं वैसा ही ध्यान हमें गर्मियों में भी रखना चाहिए। बस तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम का अपना मिजाज होता है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
1: जी तो मनोज जी बताइए, अपनी पसंद तो आपने अभी तक बताई नहीं है।
0: हाँ दीदी पसंद बता दूँ, दीदी पसंद है, फिल्म का नाम है दीवाना, उसमें गाना है तेरे दर से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गया कुछ याद रहा, ये है गाने की बोल।
1: अच्छा, पुरानी वाली दीवाना सुनना चाह रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: दीदी पुरानी में है ये गीत।
1: अच्छा, जी,
0: हाँ
1: बिल्कुल ठीक
0: कुछ
1: ठीक
0: भूल गया कुछ याद रहा, एक फिल्म और बता दूँ अगर ये नहीं मिले तो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये तो क्योंकि मेरे पास सुना है, मैंने आपके केंद्र में कई बार है, और अगर
1: जी
0: आपको कुछ दिक्कत दिखे तो फिर मैं एक और बता दूं
1: जी विकल्प साथ में रहे तो अच्छी
0: जी।
1: बात है।
0: दूसरी
1: बताइए।
0: है, फिल्म का नाम है आवारगी, और उसमें गजल है अल्ताफ राजा जी की आवाज में, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला इसमें।
1: जी, चमकते चांद को। तो हमारी कोशिश रहेगी मनोज जी कि हम यही सुना दे, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका है, तो चमकते चांद को सितारा सुना दिया जाए, है
0: हाँ शानदार, मजा आ जाएगा दीदी
1: ना। जी,
0: बिल्कुल। और
1: ठीक
0: मैं तो
1: है।
0: यही सोचता हूँ दीदी कि अगर मेरे हिसाब आप परेशान ना हो ज्यादा तो ठीक है, जो मिल जाएगा आप वो सुनवा
1: अरे
0: देंगे।
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी हर पसंद हमारे पास है ना।
0: ये तो
1: लेकिन
0: बिल्कुल सही है
1: मौके मौके को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चमकते चांद को सितारा हमारे जो ईद मनाने वाले हमारे श्रोता
0: है,
1: हैं, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी ये गीत
0: बहुत अच्छी
1: सुनकर,
0: बात
1: है
0: बहुत अच्छी बात।
1: ना। जी
0: ठीक
1: शुक्रिया मनोज जी, और ऐसे ही फोन करते रहिए, हमसे बात
0: जी
1: करते रहिए। नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार। मैं
0: नमस्कार। ना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मालेगांव से बात कर रहा हूँ,
0: जी, मालेगांव से, महाराष्ट्र।
1: तुलसीराम व्यास, तुलसीराम।
0: अच्छा जी। तो मालेगांव में कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण आपको?
1: मालेगांव में, मैं महाराष्ट्र में मालेगांव में, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है।
0: जी।
1: आकाशवाणी जिस तरह आकाश में अच्छी तरह विराजमान है, उसी तरह सबके दिलों में विराजमान है आकाशवाणी।
0: शुक्रिया
1: आकाशवाणी सबके दिलों में विराजमान है।
0: जी।
1: कहीं
0: इसीलिए
1: भी खड़े रहो, आकाशवाणी पे आप गीत आराम से सुन सकते हो। और हमारा एक भाई है, 1-1.5 साल का, वो नीमच में रहता है।
0: अच्छा।
1: वो आकाशवाणी से इतना लगाव है उसका कि
0: जी।
1: वो मोबाइल लगता नहीं उसका, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, एक पुराना गाना दिया उन्होंने मुझे कि
0: जी
1: बोले आपका फोन लग जाए, तो उनका नाम है RC जैन,
0: जी जी
1: वो पोस्टमास्टर है, रिटायर,
0: जी
1: 82 साल के। उनका
0: जी तो कौन सा गीत
1: आकाश,
0: उन्होंने आपको बताया है
1: हाँ,
0: सुनवा उन्होंने कौन सा गीत बताया आपको सुनवाने के
1: उन्होंने
0: लिए?
1: एक बहुत पुराना गीत बताया है, ये आकाशवाणी को बहुत दिलों से चाहते। उनका गीत है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना, खुशी देने
0: खुशी
1: वाले।
0: देने वाले।
1: ये
0: जी।
1: आकाशवाणी से कहा है उन्होंने
0: अच्छा।
1: कि मुझे प्यार, उनको प्यार की जिंदगी आकाशवाणी ने दी है। और वो कहते हैं कि मुझे कभी गम न देना, मुझे खुशी देना आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि हम कभी अपने श्रोताओं को निराश न करें, हम उन्हें कोई दुख न पहुंचाए, कोई गम न पहुंचाए। बिल्कुल, हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और इसको पूरी भी करते हैं, है ना? कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बात कही है कि जो आपकी इस बात से थोड़ा तालमेल रखती है। जब आप कार्यक्रम सुनेंगे तो
1: आपका
0: आप
1: शुभ नाम,
0: जी, मैं प्रियंका
1: शुभ,
0: बात कर रही हूँ,
1: हाँ,
0: प्रियंका बात कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा प्रियंका जी, तो
0: जी।
1: ये गीत उनका, उनको सुना देना, तो उनको बहुत खुशी होगी।
0: जी। शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओ, कभी-कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है, हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का, उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। तो आज का ये सफर कार्यक्रम फोन करे गीत सुने का आपने तय किया था आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका के संग। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुन

आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुन।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2,585 रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 40 रूपये बोनस का लाभ दिया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 28 तक चलेंगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। और पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहारा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको सिर्फ एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसी सुविचार के साथ युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं, वार्ता और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए गीत संगीत। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से, जिसका विषय है ड्रग्स एवं नशे का सेवन ना करें। साथियों, आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स, हर प्रकार का नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत अक्सर शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है। नशे का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा देश का भविष्य हैं, वे नशे की गिरफ्त में आकर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम करता है और कई बार अपराध तथा हिंसा की ओर भी ले जाता है। साथियों, नशा करने से फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग प्रभावित होते हैं। कई बार कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ड्रग्स एवं नशे के सेवन से गुस्सा, तनाव, डर, अवसाद और याददाश्त कमजोर की समस्या बढ़ सकती है। इससे कैरियर व हमारे काम पर भी असर पड़ता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे के सेवन से झगड़े, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। एक नशे की लत व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। कई परिवार टूट जाते हैं और युवाओं का उज्जवल भविष्य अंधकार में चला जाता है। साथियों, ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें। इसके लिए अपना खाली समय उन गतिविधियों में बिताएं जो आपकी पसंद की हों, जैसे कि पेंटिंग, खेल, संगीत या किताबें पढ़ना। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे नशे की तलब कम होती है। साथियों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। साथियों, ये तो हमने छोटी सी चर्चा की ड्रग्स एवं नशे का सेवन न करें, और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

साथियों, अभी आपने सुना मन फिल्म का ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार थे समीर और संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं आपको एक और चर्चा की ओर। साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के सच्चे मसीहा और भारतीय राजनीति में सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे उस किसान की आवाज

0: थे जो खेतों में पसीना बहाता है और गांव में बसता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और समझा। यही कारण था कि आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और कृषि बने। उन्होंने वर्ष 1923 में आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। साथ ही चौधरी चरण सिंह का स्पष्ट विचार था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने किसानों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कानून ने लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। वे बड़े उद्योगों की अंधाधुंध नीतियों के बजाय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। वे अत्यंत सादगी पूर्ण जीवन जीते थे। सत्ता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में विनम्रता व ईमानदारी बनी रही। साथियों, वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, उनके सिद्धांत व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। दूसरा, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है। तीसरा, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता ही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई सन 1987 को हो गया था। उनकी समाधि स्थल जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है, भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा सत सत नमन। साथियों, ये तो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं आपको एक वार्ता की ओर, जिसका विषय है गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार हैं भूमिका चतुर्वेदी।
1: जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा सभी जल जीवधारी जल पर निर्भर करते हैं। जल केवल पीने के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन निर्माण तथा दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही जल का आवश्यक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में तापमान बढ़ने के लिए नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। भूजल स्तर नीचे चला जाता है तथा लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। शहर में पानी की सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को टैंकर पर निर्भर होना पड़ता है। कई स्थानों पर जल संकट गंभीर हो जाता है। पीने के पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है। आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए गर्मियों में जल संरक्षण केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जल का महत्व। जल मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। जल का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। घरेलू उपयोग, पीने, खाना, बनाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए आवश्यक है। खेती पूरी तरह जल पर निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। कारखानों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, वस्तुएं बनाने तथा सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण संतुलन, नदियाँ, झीलें तथा समुद्र प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए भी जल आवश्यक है। गर्मियों में जल संकट के कारण, गर्मियों में पानी की कमी कई कारणों से उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि, गर्मी के मौसम में सूर्य की तीव्रता, गर्मी के कारण जल तेजी से वाष्पित होता है, इससे तालाब, नदियाँ और झीलें सूखने लगती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगते हैं। बोरवेल और ट्यूबवेल में लगातार उपयोग से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। वर्षा की कमी, यदि वर्षा कम होती है तो जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं भर पाता। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, पेड़ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होती है और जल संकट बढ़ता है। जल प्रदूषण, नदियाँ और तालाबों में कचरा तथा रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। जल की बर्बादी, लोग नल खुला छोड़ देते हैं तथा आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण का अर्थ, जल संरक्षण का अर्थ है जल का सोच समझकर उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना ना करना पड़े। जल संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गर्मियों में जल संरक्षण की आवश्यकता, गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पीने के पानी की उपलब्धता, यदि पानी बचाया जाएगा तो सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकता है। कृषि की सुरक्षा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और फसलें सुरक्षित रहेंगी। भूजल स्तर बनाए रखना, जल संरक्षण से भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने से नदियाँ, तालाब और झीलें सुरक्षित रहेंगी। भविष्य की सुरक्षा, आज जल बचाने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा का चयन, वर्षा के पानी को एकत्र करके उपयोग करना वर्षा जल चयन कहलाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। लाभ, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी दूर होती है, भविष्य के लिए जल संग्रहित होता है। नलों को बंद रखना, कई लोग पानी का उपयोग करने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, इसलिए उपयोग के बाद नल तुरंत बंद करना चाहिए। रिसाव रोकना, टूटी हुई पाइपलाइन और टपकते नलों से बहुत पानी बर्बाद होता है, इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। बाल्टी से स्नान करना, सॉवर की तुलना में बाल्टी से नहाने पर कम पानी खर्च होता है। पेड़ लगाना, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है। जल पुनः चक्रण, रसोई, कपड़े धोने तथा अन्य कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पौधों में डालने या सफाई के कार्य में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होती है। लोगों को जागरूक करना, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामाजिक संस्थाओं को अभियान चलाने चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका, विद्यार्थी समाज का भविष्य हैं, वे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पानी व्यर्थ करना, दूसरों को जागरूक करना, स्कूलों में अभियान चलाना, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। सरकार की भूमिका, सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे नए तालाब और बांध बनाना, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना, जल प्रदूषण रोकना, जागरूकता अभियान चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट, गांवों में गर्मियों के दौरान जल संकट अधिक गंभीर होता है, कई गांव में महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, खेती प्रभावित होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तालाबों का निर्माण, कुओं की सफाई तथा वर्षा जल संचयन आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योग भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप कई शहरों में गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। जल संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है। यदि पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। जल है तो कल है, हर बूंद कीमती है। जल संरक्षण अपनाओ, भविष्य सुरक्षित बनाओ। पानी की बर्बादी रोको। गर्मियों में जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जल है तो जीवन है।
0: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता गर्मी में जल संरक्षण। वार्ताकार थी भूमिका चतुर्वेदी। साथियों, हमारी आखिरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस उन बहादुर शांति रक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह दिन उन वीर सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों और नागरिक कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत 29 मई वर्ष 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना है जहां युद्ध, हिंसा और अस्थिरता के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक विभिन्न देशों से आते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा करने, राहत कार्यों में सहायता देने तथा शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के हजारों सैनिकों ने दुनिया के अनेक देशों में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी अनुसार

महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वे हमें यह संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और सहिष्णुता से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 2026 का मुख्य विषय है शांति में निवेश करें, इन्वेस्ट इन पीस। यह विषय शांति सैनिकों को उनके महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं लव ब्रेकअप जिंदगी से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लव ब्रेकअप जिंदगी से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। और साथियों, अब वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा योग उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है अप्रेंटिस, पदों की संख्या है 5,000, आयु सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.bankin पर विजिट करें। साथियों, ये तो रही आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र शिल्पी अग्रवाल को। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
6: बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत तुमको मेरी कसम फिल्म से, सुर और संगीत प्रतीक वालिया के, शब्द रचना विक्रम भट्टी।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत।

द डिप्लोमेट। अब इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सेकिया ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सेकिया।

और आइए अब सुनते हैं अमानत फिल्म का गीत, साहिर का लिखा हुआ। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरे इश्क में फिल्म से। फहीम अब्दुल्ला ने इस गीत को गाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त बनाना है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश और स्वर्ण तथा विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल 1 जून 2026 से खुलेगा, जबकि एक पारदर्शी त्रुटि मुक्त प्रक्रिया और उच्च मूल्यांकन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस साल गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that LPG production is all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
3: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
2: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. The Supreme Court today stressed accountability for the lapses in the NEET paper leak case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe was hearing pleas on the matter, including one seeking a direction to replace or restructure the National Testing Agency with a robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The bench asked the centre to file an affidavit and posted the matter for hearing in the second week of July. Solicitor General Tushar Mehta told the bench that the government is concerned about the youth and is committed to ensuring there are no lacunae. Benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of the trade. The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in qualifier 2 match in New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

6:10 आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों की महफिल में कुछ सदाबहार गीत।

0: भविष्यति। विजय त्रिदलम् रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत स्काई फोर्स फिल्म से है। विशाल मिश्रा ने इस गीत को गाया है। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बाग।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नादानिया फिल्म का गीत। सचेत टंडन, आशीष कौर और सचिन जिगर की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन।

रिफ्यूजी फिल्म का गीत सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.com।

0: www.cdc.co.in याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
4: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
3: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़।

0: में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम विवरण के लिए। तो आइए पहले आज के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर खेल जगत में हम सुनवाएंगे राहुल गढ़वाल की वार्ता, कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे राग भाव कौंस में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। लोक संगीत में 9:15 पर सुनिए रामदीन कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनेंगे झलकी लॉटरी खुल गई।

फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए सिसकियां धारावाहिक की 4वीं कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनेंगे दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी। कल शाम 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सुर्खियों में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8 बजे। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युवा भारती और 10 बजे सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें कल आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, सीबीआई करेगी जांच और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चालू। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जम्मू पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल पूरे होने पर 5 राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग आज 182 देशों में मौजूद है और पूरी मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में ध्यान विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन गया है और जीवन में ज्ञान, ध्यान और संगीत हमेशा साथ रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से बर्बाद हो। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। श्री प्रधान ने कहा,
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें एनटीए को हटाकर उसकी जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग भी शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। केंद्र सरकार ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अभी रोजाना 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस अभियान को भारत के सैन्य इतिहास

0: की अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि ये तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट तालमेल और आधुनिक सैन्य क्षमता का जीवंत उदाहरण था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक प्रकाशन का भी विमोचन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और भूशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थ स्थलों से सीख ली जा रही है। पीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गिरिबाला सिंह पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें भोपाल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल में एसटीएफ ने कल रात गांधीनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारकर अवैध कफ सिरप बनाने के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यहां ऑफ कफ नाम की नशीली सिरप बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रात 12 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली, जिसमें 700 से ज्यादा पेटियां, बोतलें और पैकेजिंग मशीनें जब्त की गई हैं। 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104,22,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया और 13 लाख से अधिक किसानों को 30,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में प्रदेश देश भर में नंबर एक पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 40 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लग चुके हैं, जिनमें प्रदेश के 1,21,000 से अधिक घर शामिल हैं। प्रदेश में इन संयंत्रों से 456 मेगावाट से ज्यादा स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जबलपुर शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि NHAI करीब 3,540 करोड़ रुपए की लागत से 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बना रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज बताया कि ये 4-लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर खासतौर पर भारी और लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बाहर से रास्ता देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छिंदवाड़ा के खोखरा वाटरफॉल पर कल बुधवार को हुए हादसे में डूबे दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। हादसे में एक शव गुरुवार को और दूसरा शव 36 घंटे बाद आज गहरे पानी से निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त वाटरफॉल के पास सेल्फी लेते वक्त संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए थे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खूब पानी पीने, बच्चों को हाइड्रेट रखने और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर में गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। दतिया में जल संरक्षण और मनरेगा में लापरवाही पर 11 सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। धार में वन विभाग ने छापा मारकर निजी कंपनी के गोदाम से विभिन्न प्रजातियों की छाल और बीजों का अवैध भंडारण जब्त किया। झाबुआ में ITI में प्रवेश के इच्छुक छात्र 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। देवास में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का काम जारी है। नर्मदापुरम में पवारखेड़ा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किया गया। आगर मालवा के नलखेड़ा में विधायक भैरव सिंह परिहार ने 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। निवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिवपुरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटीशियन प्रशिक्षण में 31 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सेमिनार और मॉकड्रिल आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का ये रूपेश भैया की राम राम। और भैया बहनों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारे भैया बहन सब कुशल मंगल होंगे। और भैया अपन देख रहे हैं कि गर्मी तो भयंकर पड़ रही है और आज तनक मौसम में राहत सी मिली है, तनक हवाओं में ठंडक है। पर भैया अभी अपन जी नहीं कह सकते हैं कि आगे भी क्या स्थिति बनी रहे, पर भैया हम यही कहेंगे कि हमारे भैयन को गर्मी से बचने के पूरे इंतजाम से रहना चाहिए और खुद भी इंतजाम से रहें और अपने बुजुर्गों काजे भी इंतजाम से रखें और अपने पशुधन को भी अच्छे से इंतजाम से रखें। जरूरत हो तो अपन दोपहिया में निकलें और दोपहिया में अपन करबो होए तो अपन कछु पूरे कपड़ा पहन कर निकलें और अपने मुंह पे कछु गमछा तोलिया बांध कर निकलें। कहे कि भैया अपन स्वस्थ हैं तो सब परिवार खुशहाल है और अपन खेती पे भी तभी अच्छा ध्यान दे पाएंगे। और भैया अपन बात करते हैं आपके प्राकृतिक संसाधनों का अपन दुरुपयोग ना करें। भैया बहनों प्राकृतिक संसाधन भगवान की अनमोल देन है। अपन पानी जंगल जमीन हवा खनिज ये सभी जीवन चलावे के अपन आधार हैं और अपन देखा थे कि अपन ये सवाई का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां से कहो भैया कि अपनी आगे आवे वाली पीढ़ी खातिर संकट खड़ा हो सकत है। अपन पानी को बेवजह बहाव बंद करें, बिजली की बचत करें, जरूरत हो वह हिसाब से अपन बिजली को उपयोग करें और भैया पेड़ पौधे लगाएं और मैंने काटे नहीं जंगल कटाई रोकें, खेतों में रासायनिक खाद और दवाइयाँ को जरूरत भर इस्तेमाल करें, जमीन की उर्वरकता बचाए खातिर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाएं। भैया बहनों अपन आज संसाधन बचा के चलेंगे तभी अपन कल सुरक्षित रहें और अपनी प्रकृति बची रहे, ताकि अपना जीवन अपने बचो रहे। और भैया प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना है तो हमें सभी की जिम्मेदारी है कि पानी मिट्टी जंगल की अपन रक्षा करें, ताकि खेती भी

प्रकृति का अगर संतुलन बिगड़े हो तो बाको असर सीधो अपन पे इंसान पे ही पड़े हो। आज अपन देख आते हैं कि गर्मी, असमय बारिश, सूखा, बाढ़, नई नई बीमारियां, ये सब का है, ये सब अपनी गलती है और जई को परिणाम है। तो हमने अपन का ये समझना हो भैया कि प्रकृति सिर्फ अकेली उपयोग की चीज नहीं बल्कि जीवन दाता है। अपन जरूरत भर संसाधन उपयोग करें और उनको दुरुपयोग न करें, प्रकृति को सम्मान करें, तभी सुरक्षित जीवन अपन रहे। और भैया अपन अब बात करते हैं कि अपन नरवाई पराली ना जलाएं। तो ये अपन देखा थे कि अपने जो खेत खाली हो जाते हैं वहां में जो अपने अवशेष डंठल बचाते हैं जो अपन पराली किए थे, तो हमारे किसान भैया खेत जल्दी खाली करवे के चक्कर में नरवाई में आग लगा देते हैं, बिकस सोचते हैं और बिने लगाते हैं कि जैसे खेत जल्दी साफ हो जाते हैं। भैया ऐसा नहीं है जी, आदत आपकी फायदा कम और नुकसान ज्यादा बने पहुंचा रही है। पर्यावरण भैया जैसे पर्यावरण, खेत, इंसान सभी के लाने नुकसान है। और अपन देखते हैं कि खेत में आग लगावे से अकेली पराली नहीं जलाते हैं बल्कि खेत की उपजाऊ ताकत भी घटत है। और मिट्टी में अपन जो मौजूद अच्छे जीवाणु, केंचुआ और सूक्ष्म जीव हैं, वे सभी जब जला आग जलावे से, डंठल जलावे से, पराली जलावे से खत्म हो जाते हैं। और यही अपने भैया अपन देखते हैं कि अपनी खेती काजे और मिट्टी काजे उपजाऊ बनाउत हैं। नरवाई जलावे से मिट्टी की उर्वरकता तो घटत ही है, संग संग मिट्टी कठोर हो जाऊत है, उत्पादन कम हो जाऊत है, और जोन जहाँ से धुआं निकलत है वहां से प्रदूषण भी बढ़त है, और जोन हमारे भैया कछु ऐसे ही हैं बिना सांस लेने में भी जहाँ से परेशानी आते हैं। कछुअन का है तो भैया हो पराली जलत है तो बाकी बगल में आंखन में भी जलन पड़न लगत है। और भैया जहाँ पराली जल रही है वहां पर देखेंगे जहाँ से सड़कें हैं बिन पे धुंध से दुर्घटना होवे को खतरा भी बढ़ जाऊत है। तो भैया अपन कई बार देखा थे कि खेत से उठी आग दूसरे खेतों में काजे भी पेड़ पौधे जंगल और गांव काजे भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। मान भैया अपन यही कह सकते हैं कि पराली जलावे से फायदा कम, समस्या बिलात हैं। तो कहा है कि जो सवाल है कि अपन क्या करें पराली को, तो खेत में भैया हो जाए मिलाएं अपन पराली का, जो अपन खेत में ही रोटामेट, बेटर, पंजा, हैरो, कल्टीमीटर और भी कई यंत्र आते हैं जो उनसे अपन जाए खेत में ही मिला दें। जैसे कहो तो भैया कोई बढ़िया जो खेत में मिलवे के बाद ये खाद को काम कराते हैं और जैसे अपनी माटी की ताकत बढ़त है। वैसे तो भैया देखो जाए तो अपन जाए नहीं भी जलाएं तो जैसे एक फायदा और है, वो कहा है कि पशु चारा की बात करें पंजाब में तो कई फसलें अपन ऐसी होते हैं जो उनके अवशेष डंठल पशुओं के चारे के काम में आ जाते हैं, भूसा बनाने के काम में आ जाते हैं। तो भैया वो जहाँ में सरकार भी सलाह देते हैं, कृषि और किसान कल्याण विभाग हमेशा किसान भैयाओं से यही अपील करत रहता है कि भैया नरवारी ना जलाएं, कई जगह जागरूकता अभियान भी चलाउत है और सरकार और पराली नष्ट करवे बारी मशीनन पे भी सरकार अनुदान भी दे रही है। तो भैया नरवाई जलावे पे आप पे कार्रवाई भी हो सकत है और सरकार ने कानून भी ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि आप पे जुर्माना भी लग सकत है। और अपन देखें तो भैया आप पे FIR तक दर्ज हो सकत है और प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकत है। तो भैया पर्यावरण नियमों के तहत जहाँ में दंड को भी प्रावधान है। और कछु भैया मामलों में तो ऐसे हैं कि मतलब खेत की अपने जो बाकी कितने बड़वे बा हिसाब से अपन ने नरवाई जलाई है तो 2500 से लेकर 30,000 तक को जुर्माने को प्रावधान भी है। तो भैया ऐसी समस्याएं हैं और अपन एक दूसरे की देखा देखी पारंपरिक डर्रे पर चलत वाए जाए नरवाई का जाए जला रहे हैं। तो भैया समझे अपन, समझदारी से काम लें। आजकल तो मोबाइल, इंटरनेट, सब सबको जमानो है, जैसे अपन मोबाइल और इंटरनेट से हम अपन हर चीज के अच्छे और बुरे परिणाम देख सकते हैं, हम डार के देख सकते हैं कि जब चीज से अपने कब

और का नुकसान है। तो भैया ऐसी समझदारी से अपन काम लें और पराली जला वो बंद करें। और भैया बातें बहुत हो गई, अपन आगे और भी करेंगे, पर जा से पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बढ़िया सा लोकगीत, तो सुने आप।

0: भैया अभी आपने सुना जो लोकगीत जा गर्मी के मारे और जा गाय कलाकार रहते हर गोविंद कुशवाहा। और भैया रोज ना हम आपको एक ना एक बढ़िया भेंटवार्ता लेके आते हैं जिससे आपकी जानकारी बढ़े। तो जय क्रम में आज हम आपका जो एक बहुत अच्छी भेंटवार्ता सुनवाओ जा रहे हैं, जी को विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, जहाँ में वार्ताकार हैं श्री जितेंद्र कुमार जाटव और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो सुनो भैया जो आप भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कृषि है, कृषि बहुत सारे नए आयाम नए समय में लेकर आ रही है। कृषि कार्य में समय समय पर तमाम तब्दीलियां यानी कि बदलाव आ रहा है और कृषि के कार्य को हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास भी हो रहे हैं। तो कृषि के कार्य में हम बदलते हुए स्वरूप कि अगर हम अलग अलग हिस्से करते हैं तो उसमें फल और सब्जियां भी आती हैं। फल और सब्जियों को अगर हम तुरंत यूज़ में ला लें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए यानी कि उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे अगर बेचेंगे तो दाम कम मिलेंगे, यानी कि उसका हम कुछ दूसरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दूसरा उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी हैं। आप उद्यान विस्तार अधिकारी हैं शिवपुरी में। जाटव साहब, सभी सुनने वालों के बीच में हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्ते भी। जाटव साहब, ये बताएं कि जो विषय है फल सब्जियों का प्रसंस्करण, इसमें प्रसंस्करण शब्द क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब मीनिंग मतलब हिंदी नहीं, आम जुबान में किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
2: जी, सर्वप्रथम सभी श्रोताओं एवं किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे देश में उद्यान की फसलों का उत्पादन लगभग पूरे वर्ल्ड में या विश्व में कहें तो दूसरे नंबर पर उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है या उसका नुकसान होता है, तो कई तरीके से हम देखते हैं कि फसल उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन हम ट्रांसपोर्ट में उसका लॉस का उठा पाते हैं कि 20 से लगभग 36% तक हमारा ट्रांसपोर्ट में सही समय पर उच्च क्वालिटी का या सामग्री ट्रांसपोर्ट ना हो पाने के कारण उसका नुकसान या लॉस हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसंस्करण एक अच्छा, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, ये प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग जो शब्द है, ये एक शब्द नहीं, ये बहुत ही बड़ा एक विस्तृत इसको शब्द कहें कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसके जो लॉसेस हैं हमारे उसको कम किया जा सके इसमें बदल कर प्रसंस्करण करके। और दूसरा, जब हमें हमारे यहाँ जब उत्पादन ज़्यादा होता है और किसान भाइयों को दाम कम मिलता है, तो उसका हम दूसरे प्रोडक्ट में बदल कर ऑफ सीजन या जब हमारे पास उपलब्धता कम होती है उस समय हमारे पास इसकी भी वो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस समय हमें इसको बचा के रखें या किस तरीके से उसको परिवर्तित करके रखें उसी रूप में, ताकि हमें आसानी से मिल सके। तो
1: जी
2: प्रसंस्करण या फलों सब्जियों का जो कुछ है कि उनके जो नुकसान होते हैं या ख़राब होने का जो कारण होता है, तो फलों या सब्जियों में हम देखते हैं कि जो इनके एंजाइम होते हैं,
1: जी
2: जो इनको छोटे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अगर उनकी हम उनको निष्क्रिय कर दिया जाए,
1: जी
2: जो उनकी क्रियाशील होती है उनको निष्क्रिय कर दिया जाए, तो उसमें क्या है कि हमारी जो सब्जियां हैं फले हैं वो खराब नहीं होंगे।
1: जी,
2: और
1: अपनी बातचीत बताया कि उसका अगर हम अंग्रेजी में कहें तो यूटिलाइजेशन बदल दिया जाए, उसका उपयोग बदल दिया जाए सब्जी का या फल का, तो वो हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और दाम भी जब ऑफ सीजन होगा तब तो उसका ज़्यादा मिलेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न ये आता है कि फल और सब्जियाँ, चूँकि बात शिवपुरी ज़िले की हो रही है, शिवपुरी ज़िले में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, हम उसमें अगर फल और सब्जियों में लें तो फलों में कम है लेकिन सब्जियां ढेर मात्रा में है। टमाटर का एक बहुत बड़ा रकबा शिवपुरी में होता है, कद्दू का एक बड़ा रकबा होता है, इसके साथ साथ मटर का बहुत बड़ा रकबा होता है और बाकी फिर आप मेरे बताइए। तो इसका हम किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं और प्रसंस्करण करके क्या लाभ हमारा किसान ले सकते हैं?
2: जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिवपुरी ज़िले में टमाटर का उत्पादन लगभग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रकबा है, लगभग 15,000 है, लेकिन प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग लगभग 1% भी या 1% भी इसका नहीं हो पा रहा है। तो इससे किसान भाइयों को एक कभी तो अच्छा दाम मिल जाता है, कभी बहुत कम दाम उनको मिलते हैं जी। तो हम टमाटर पे या फलों पे बात करें तो कुछ जैसे प्रोडक्ट हैं, हम फलों में देखते हैं कि एक फलों को आप जैम में बदल सकते हैं।
1: कौन कौन से फलों का शिवपुरी के लिए खासतौर पर जिक्र करना चाहेंगे? तो हम शिवपुरी के फलों की बात करें,
2: शिवपुरी में हम देखें तो अमरूद है, नींबू है, इनका हम देखें तो आप जूस बना के रख सकते हैं, अचार बना के रख सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, इन फसलों में हम फलों में कर सकते हैं। और जब सब्जियों बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विशेषकर टमाटर पे हम बात करते हैं, तो टमाटर का उत्पादन पर्याप्त है शिवपुरी में। हमारे यहाँ के किसान भाई एवं युवा साथी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण में एक अच्छा रोजगार ढूंढ सकते हैं। उसमें टमाटर के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे टमाटर प्यूरी बना सकते हैं, टमाटर सॉस बना सकते हैं, टमाटर केचप बना सकते हैं, टमाटर से संबंधित कई उत्पाद हमारे यहाँ किसान भाई एवं युवा साथी तैयार कर सकते हैं।
1: कोल्ड स्टोर में टमाटर को रख दें तो?
2: जी हाँ, कुछ समय के लिए अगर रखना हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए हम नहीं रख सकते।
1: जी, तो ये टमाटर का होगा कि आप उसका प्यूरी बनाएं या केचप बनाएं या उसका सॉस बनाएं या उसकी चटनी बनाकर कुछ फॉर्म में रखें। कौन सी दूसरी सब्जी है? कद्दू का मैंने जिक्र किया, आप बताएंगे कद्दू का वाकई में यहाँ रकबा है कि नहीं है, या कद्दू का प्रोडक्शन कम है, या दूसरी किसी सब्जी का हो तो सब्जी का पहले तो नाम, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं?
2: हम कद्दू होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन टमाटर के बाद हम बात करें तो यहाँ प्याज की अच्छी खेती होती है शिवपुर जिले में। तो प्याज का भी आज हम देखते हैं कि प्याज का उत्पादन काफ़ी है, और प्याज हर सब्जी में और हर समय हर फैमिली हर परिवार को उसकी
1: जरूरत डिमांड है,
2: बिल्कुल 12 महीने उसकी डिमांड या मांग रहती है। तो उसका भी हम देखें कि कई टाइम पे देखते हैं कि प्याज में उतार चढ़ाव कई ज़्यादा देखने को मिलता है वर्ष के अंतर। एक समय पे देखते हैं तो 5-10 रुपए किलो ही मिलती है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि 50-60 से लेके कई महंगी हमको खरीदनी पड़ती है।
1: तो प्याज का प्रसंस्करण कैसे करें?
2: प्याज में प्रसंस्करण है कि हमारे किसान भाई प्याज का आप उसको डिहाइड्रेट करके, डिहाइड्रेशन एक शब्द है कि उसका जो पानी है
1: नमी,
2: नमी को खत्म किया जाए, मॉइस्चर को खत्म किया जाए, और उसको सुखा कर उसका आप चाहें तो पाउडर तैयार कर सकते हैं प्याज लहसुन में। ये करके हम देखते हैं मार्केट में भी आप छोटे छोटे पाउच में भी प्याज लहसुन के पेस्ट भी आता है और पाउडर भी आता है। तो ये चीज़ें जब हमारे पास पेस्ट रहेगा, पाउडर रहेगा, तो जब हमारे पास मार्केट में प्याज की मात्रा कम रहेगी और कीमत बढ़ जाएगी, उस समय हमें इसका मतलब प्रसंस्करण के द्वारा वो चीज़ तैयार की है उसका उपयोग कम दाम में एवं 12 महीने उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम मटर की बात करें तो मटर में भी हम देखते हैं कि 12 महीने हरी मटर नहीं मिल पाती है, लेकिन आज जनरली हम देखते हैं कि फ्रीजिंग के द्वारा उसको ठंडा करके एक पॉइंट पर, हम हरी मटर को ही ठंडा करके एक फ्रीज पॉइंट पर तैयार करके अगर उसको रखते हैं तो वो भी एक अच्छे भाव में और 12 महीने हमको हरी मटर के रूप में एज ए मार्केट में मिल जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं।
1: तो आपने 3 सब्जियों का जिक्र किया, खासतौर पर प्याज का किया, टमाटर का किया और मटर का किया। इसके अलावा शिवपुरी की कौन सी मेन क्रॉप है सब्जी के रूप में?
2: जी हाँ, अभी सब्जियों में तो हम देखें तो मेन तो टमाटर ही है शिवपुरी का।
1: और फलों में जिक्र करें, आपने जिक्र किया था 2 फलों का, एक आपने नींबू का नाम लिया था और एक जामफल का नाम लिया
2: जी
1: था।
2: जी,
1: तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है?
2: जी हाँ, हम अमरूद में बात करें तो अमरूद का अच्छा प्रोडक्शन, जो हम कहें यहाँ का जो वातावरण है अमरूद और नींबू के लिए अनुकूल है, यहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में रकबा हमारे शिवपुरी जिले में इन फसलों में नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो अमरूद से, हम चाहते हैं तो अमरूद का हम देखें तो इसका पैकेट निकाला जा सकता है प्रसंस्करण के द्वारा, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसकी जेली भी बनती है अमरूद से, वो भी कर सकते हैं। और नींबू का देखें तो नींबू का तो हम देखते हैं कि मार्मलेड एक उत्पाद होता है, वो बन सकता है। दूसरा, इसका जूस के रूप में उपयोग करते ही हैं, जिस समय हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में लॉस ना हो तो हम सिकंजी या जूस में भी उसका उपयोग करते हैं, और इसका अचार बना के भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं।
1: ये तो आपने बताया कि फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करके हम उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग बदल सकते हैं। अब बात आती है कि शिवपुरी जिले में इन सबको करने की सुविधाएं कितनी है?
2: ये हमारे युवा साथियों के लिए ये विशेष सवाल है और उनके लिए एक रोजगार भी पैदा करना है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत हमारे युवा साथियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। जो किसान भाई या युवा साथी इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी यूनिट आप बैंक के माध्यम से लोन लेकर इसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे विभाग से हॉर्टिकल्चर से आपको 35% 35% तक का अनुदान उनमें दिया जाता है और 65% 65% का अनुदान आपको किस्तों के रूप में बैंक में जमा करना होता है। और इसमें हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सीपुरी

0: ज़िले से बहुत अच्छे आवेदन हो रहे हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छे रोजगार हो रहे हैं और बहुत अच्छे युवा अपना काम इस योजना के अंतर्गत कर रहे हैं।
1: अगर हमारे कृषक भाई किसी यूनिट को देखना चाहें तो क्या शिवपुरी ज़िले में इस तरह की यूनिट संचालित हैं?
0: जी हाँ, एक यूनिट रातौर में है, एक जेएनजी के हैं। हम जो किसान भाई चाहें तो हमारे विभाग में, उद्यान विभाग में हमसे संपर्क करें, हम उनको दिखा सकते हैं यहाँ पर सॉस का निर्माण होता है।
1: प्याज के लिए
0: जी हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन टीकमगढ़ में एक यूनिट है, वहाँ पर हम प्याज लहसुन एवं अदरक के पेस्ट एवं ड्रायर जो सुखाकर पाउडर तैयार किया जाता है वो हम किसान भाई जो इच्छुक होंगे उनको हम दिखाएंगे और पूरा उनको समझाने की कोशिश।
1: और फल में अगर हम बात करें तो नींबू और जामफल जिनका आपने जिक्र किया, इनकी क्या स्थिति है?
0: इनका ज़्यादा रकबा नहीं है और ज़्यादा जनरल हम देखें तो आजकल नींबू अमरूद में तो हमने जैसे बताया कि अचार है, जूस है, तो इसका तो जनरल उपयोग सभी लोग करते हैं। अचार आजकल घर घर नींबू का डाला जाता है,
1: घर घर डाला जाता है। घर में 1 किलो का डाला जाएगा, 2 किलो का डाला जाएगा, लेकिन किसान जिसके यहाँ 10 क्विंटल नींबू है वो कितना अचार डालेगा?
0: ये बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अचार की डिमांड भी जिस तरीके से हम सलाद के रूप में टमाटर है, प्याज है, इनका उपयोग करते हैं, वैसे अचार भी हर जगह सभी को ज़रूरत रहती है और इसका भी आप बड़े मात्रा पर तैयार कर सकते हैं और इसका भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं।
1: क्या शिवपुरी ज़िले में आप उद्यान विभाग में उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, शिवपुरी ज़िले में क्या बाहर की कंपनियां चाहे शासकीय हों अशासकीय हों आकर इस सामान को क्रय करके इसका यूटिलाइजेशन बदल रही हैं?
0: जी हाँ, जैसे हम बात करें कि टोमेटो या प्याज में अपन ड्रायर करके, मतलब उनका डिहाइड्रेशन करके या उनकी नमी को ख़त्म करके सुखा कर उसका अगर पाउडर बनाते हैं, तो जैसे हम देख पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक कंपनी का जिक्र चल रहा है और वो काम भी कर रही हैं कि अगर आप टमाटर को सुखाते हैं मार्केट में, आपको टमाटर 5 से 10 रुपए किलो जब मिलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है शिवपुरी में, तो आप टमाटर को सुखाइए, हम आपको जो पाउडर तैयार होगा उससे 200 से 250 रुपए किलो तक उससे तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए ड्रायर, जो सुखाने का ड्रायर आता है, वो भी उद्यान की विभाग से आप प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के अंतर्गत उसका भी लाभ ले सकते हैं, उस पर भी 35% तक अनुदान विभाग से दिया जाएगा और उसे भी आप किसान भाई या युवा अपने लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: आपने जिस रातौर की यूनिट का जिक्र किया वो लगभग कितने लंबे चौड़े उसे जगह चाहिए अगर किसी किसान को खोलना है, वो यूनिट बनाना चाहता है तो?
0: जी देखो, अगर शुरुआत करना है तो आप केचप या सॉस की हम बात करें, चटनी की बात करें, तो लगभग ज़्यादा नहीं तो हम 3-4 हज़ार स्क्वायर फुट अगर एरिया है तो उसमें हम सॉस की या फिर यूनिट डाल सकते हैं, केचप की डाल सकते हैं, प्यूरी की डाल सकते हैं, इतने एरिया में हम आसानी से एक यूनिट लगा सकते हैं टमाटर।
1: और दूसरा, यूनिट के लिए कितना लोन तक उसे लेना पड़ेगा, मतलब 65% कितनी उसकी वैल्यू बनेगी लगभग?
0: जी हाँ, अधिकतम हमारे यहाँ हम देखते हैं के जो छूट है या अनुदान है वो अधिकतम उसकी राशि 10 लाख है, उससे अधिक अगर आप लेते हैं तो वो स्वयं जो युवा है लेने वाले कृषक हैं उनका उनकी किस्त के रूप में वहन करना पड़ेगा। हमारी 35% उद्यान विभाग से अनुदान रहेगा, लेकिन 35 में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग से दिया जा सकेगा।
1: यानी कि अगर वो 20-25 लाख का लोन लेता है तो उसका काम हो जाएगा, जितने से वो अपनी यूनिट खोल सकता है।
0: जी,
1: तो जितेंद्र कुमार जाटव साहब, आप हमारे बीच में आए, हमारे सुनने वालों के बीच में आए, श्रोताओं के बीच में आए, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण इस विषय पर बातचीत हुई। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर हम फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर सकते हैं, उसका किस तरह से मोड बदल सकते हैं, उसके उपयोग का यानी कि स्वरूप बदल सकते हैं और उसका भविष्य में उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, और आपके उद्यान विभाग द्वारा इसमें जो सुविधाएँ कृषकों को दी जाएंगी उसका भी जिक्र किया। आप हमारे साथ रहे बातचीत में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार किसान भाई।
2: भैया अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता जी को विषय है तो फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, हमें वार्ता कर रहे थे श्री जितेंद्र कुमार जाटव और उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल और पुनः प्रसारण कर रहे थे हम भेंट वार्ता। भैया जैसे कि कितनी अच्छी जानकारी बताई हमारे कृषि वैज्ञानिक जी ने कि वाकई में फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, जैसे अपन जो फल और सब्जियां लगभग हमारे बहुत से किसान भैया उगाते हैं करते हैं तो वे सीधे बेचते हैं बाजार में, पर भैया अपन इनको ऐसा काम करें जैसे मैंने कहूँ जैसे घर अपन कोई चीज़ बनाएं या उनको कोई उद्योग डालें, कोई धंधो डालें, फिर बास है अपन बाजार में माल लेके आए, या फिर अपन कौन हुआ आजकल अपन देखा था भैया के मोबाइल के माध्यम से सभी भैयाओं के पास मोबाइल है और हर चीज़

ऑनलाइन बिक रही है, तो अपन काहे ना अपनी चीजों को आज भी प्रसंस्करण करके ऑनलाइन बेचें, या पर हम दूर के बाजार में बेच भी जाएं। तो जाके ना भैया, और सरकार भी यही चाहत है कि हमारे सभी भैया खेती के संग संग बागवानी भी करें, सब्जियां भी करें, हर चीज को वो उपयोग करें, तो उसके हर चीज की वो खेती करें, जिससे बनके नकदी पैसा भी आजाद बनो रहे। जैसे फसल जोन होते है, अगर वो समय पे अपने साथ ना दे, तो जिनसे भी इनको खर्चा पानी चलत रहे। तो ये जाके लाने अपने जोन कृषि विभाग है या जो भी उद्यान की विभाग है, उसमें अपन संपर्क करें और जो चीज़ों के बारे में और समझे वहाँ जाके, और इन चीज़ों को प्रसंस्करण करें। और भैया आगे अपन चर्चा तो और भी करेंगे, पर हम आपका एक लोकगीत और सुनवा रहे हैं, धीर धरे रहो, और गायक कलाकार हैं देवती नंदन केवट। तो सुने भैया आप।

या अभी आपने सुना बढ़िया नौनो सा लोकगीत, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भैया ने जो लोकगीत जरूर पसंद आओ होगा। और भैया अब बात करते हैं आपसे पशुधन, गर्मियों के मौसम में पशुधन प्रबंधन की। भैया पशुधन किसान भैयाओं की सबसे बड़ी पूंजी होता है। गाय भैंस बकरी और अन्य कई जो पशु होते हैं वो अपने सभी भैयाओं की आय के साधन होते हैं। पर भैया गर्मियों के मौसम में अगर हम सही प्रबंधन ना करें जिनको, तो अपने पशुधन बीमार पड़ जाते हैं और दूध उत्पादन भी कम हो जाते हैं। भैया गर्मियों में पशुओं पे जो असर होता है गर्मी को, बस उन्हें का समस्या होते हैं जो भी अपन जान लें। तो भैया कम चारा भी खान लगाते हैं एक तो, दूसरी बात है पानी पानी भी ज़्यादा पीने लगाते हैं, जल्दी थक हार जाते हैं, दूध भी कम देने लगाते हैं, सुस्त से रहने लगाते हैं। तो जिस चीज़ से अपन उनकी पहचान करें कि हमारा पशु बीमार है। और भैया पशुशाला के सही प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो अपनी पशुशाला ऐसी होनी चाहिए भैया कि छाया की व्यवस्था हो, पशुशाला ऐसी जगह बनाओ जहाँ हवा आसानी से आत जात बनी रहे। मान चलो टीन की छत है बाकी, तो वह अपन क्या करें कि गर्मियों में घास फूस डाल के रखें ताकि वहाँ में ठंडक बनी रहे। और भैया साफ सफाई तो अपन जानते हैं कि हर जगह अपन अपनी घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे पशुशाला की भी साफ सफाई अपन को करना है। गर्मी में गंदगी से मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं, जहाँ से बीमारी फैलाते हैं। तो जहाँ से बिनको जो गोबर होता पाए वो साफ करें, पानी ना जमा होने दें, सूखी बिछावन रखें, ठंडक बनाए रखें, दिन में दो तीन बार पानी छिड़कते रहें। और भैया कई अच्छी बातें यही है कि अपन अपने पशुओं का ये दो तीन बार पानी पिवाएं और पशुओं को कुल मिला के अपन मिलकर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। और सवेरे संध्या के मैंने घर से काड़े का जरूरी है काड़ वो, और दिन में बिल्कुल भी अपन उन्हें घर से ना निकालें। और भैया अब चले चले हम आपको मौसम की जानकारी भी दे दिए थे, तो भैया आज के मौसम की जानकारी की बात करें अपन, तो अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हवा की गति रहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की लगभग, और मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 45 फीसदी। तो भैया अब समय हुआ आपसे विदा लेने को, तो दीजिए इजाजत अपने रूपेश भैया को कार्यक्रम चौपाल से। जय जवान राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दाश और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
1: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और बताएं प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
2: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहाँ तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है, आखिरी जो प्रगति हुई थी वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार, उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल इस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम, लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरनमेंट और जंगल की जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट है जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो चीजें रिजर्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई, तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा, और समय भी इसके कारण बचा, जो बहुत

0: लगता है, जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कंप्लीट होने में, प्रगति होने से उस पे उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग, कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को, हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहाँ पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है, मैं ये जानता हूँ, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है। जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को, विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए। आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए। अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत, खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था, तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहाँ पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंबे लगे होंगे, और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें, और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन, जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इसपे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है। और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है।
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे रेलवे हो चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं, ये देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे वहाँ भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठक होती है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक कंप्लीटली एपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार राज्य में कौन सरकार है इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management, leveraging technology and four-layered security involving citizens.

0: उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट
0: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के TMC इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और LPG का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जवायमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और ज़ेरे समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासद के लिए किया जाए।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समात जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस अकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 19

0: है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंग बंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर J.D. वेंस ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मलिक तावन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अपनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकामात इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जा

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, आईपीएल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि जुनून रोमांच जीतते हुए चैंपियंस बनने का सपना पूरा करती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी है उस टीम पर जो शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन रणनीति और खिलाड़ियों के दमदार खेल के बल पर ट्रॉफी अपने नाम कर सके। 31 मई को खेले जाने वाले फाइनल में देखना होगा कौन सी टीम यह खिताब अपने नाम करेगी। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वार्ता, जिसका विषय है कौन होगा आईपीएल 2026 का विजेता। वार्ताकार है राहुल गढ़वाल।

श्रोताओं नमस्कार। देश भर में आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है। आईपीएल सिर्फ एक सीजन नहीं है बल्कि रिकॉर्ड्स, भावनाओं, युवा जोश और बेहतरीन क्रिकेट की कहानी है। 28 मार्च 2026 को शुरू हुआ आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आईपीएल में 10 टीमें उतरी थीं, लेकिन अब सिर्फ 3 टीमें बची हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो फाइनल में पहुंच चुकी है, इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए आमने सामने हैं। अभी दोनों के बीच मुकाबला जारी है। आईपीएल 2026 का सफ़र बड़े ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 10 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में 70 लीग मुकाबलों के बाद 4 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमें इस बार प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाईं। पहले क्वालिफायर में RCB ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरह हराया और फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में RCB के 254 रन के टारगेट के सामने गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई और 92 रन से मैच हार गई। आईपीएल की पॉइंट टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर रहने से ये फायदा होता है कि अगर आप एक मैच हार भी जाएं, तो दूसरा मौका मिल जाता है। अब गुजरात टाइटंस के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। आईपीएल के पहले क्वालिफायर के हीरो रजत पाटीदार रहे थे, जिन्होंने 33 गेंदों में 93 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के प्लेऑफ में इस बार नेट रन रेट का बड़ा रोल रहा। जब प्लेऑफ की बारी आई तो 3 टीमों के बराबर 18 पॉइंट थे। नेट रन रेट ने तय किया कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। आखिरकार बेंगलुरु पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर रही। वहीं राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची। इस बार का आईपीएल कई मायनों में खास रहा। एक तरफ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने फिर साबित किया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, तो वहीं दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने साल 2012 में 59 छक्के जड़े थे, लेकिन वैभव ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के लगाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली लिस्ट में आंद्रे रसेल और जोस बटलर जैसे नामचीन पावर हिटर्स काफ़ी पीछे छूट गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली। वैभव 3 रन से क्रिस गेल का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। क्रिस गेल ने 2012 में 30 गेंदों पर शतक लगाया था। क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, वैभव कितना जबरदस्त खिलाड़ी है, शानदार, नई सिक्स मशीन। वैभव सूर्यवंशी ने एक आईपीएल सीजन में किसी भी अनकैप्ड बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव इस सीजन में बुधवार तक खेले गए मैच तक 680 रन बना चुके हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में एक अनकैप खिलाड़ी के बल्ले से निकला सबसे बड़ा स्कोर है। अब बात करते हैं उन तीनों टीमों की जिन पर इस समय पूरे क्रिकेट जगत की नज़र है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2026 के खिताब की दावेदार हैं। इन तीनों टीमों की ताकत और कमजोरी पर हम चर्चा करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीज़न की सबसे संतुलित टीम नज़र आई है। पिछले कुछ सालों में आरसीबी के लिए कहा जाता था कि टीम सिर्फ बल्लेबाजी पर निर्भर है, लेकिन इस बार कहानी बदल गई है। विराट कोहली ने फिर साबित किया कि बड़े मंच पर उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। कप्तानी चाहे किसी के पास हो, लेकिन दबाव के समय
पूरी टीम की धड़कन कोहली ही बने रहते हैं। उनके साथ युवा बल्लेबाजों ने और फिनिशर्स ने भी शानदार योगदान दिया। विराट कोहली ने अब तक खेले गए 15 मैचों में 600 रन बनाए हैं। विराट के नाम 4 अर्धशतक हैं। बेंगलुरु की दूसरी बड़ी ताकत टीम के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पहले क्वालिफायर में रजत की बल्लेबाजी के दम पर टीम ने एक तरफा जीत हासिल की थी। रजत पाटीदार ने 14 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग की गहराई है। टीम के पास पावर प्ले में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, बीच के ओवरों में स्पिन खेलने वाले देवदत्त पड्डीकल और कृणाल पांड्या हैं, और डेथ ओवर में बड़े शॉट लगाने के लिए टिम डेविड और जितेश शर्मा हैं। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इस बार आरसीबी की बॉलिंग ने सबको हैरान किया है। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से विकेट निकाले और स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में रन रोककर मैच का रुख बदला। बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार मैच की शुरुआत में विरोधी टीम के विकेट चटकाते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं। वे इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा 26 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार के पास ही पर्पल कैप है। भुवनेश्वर कुमार के अलावा कृणाल पांड्या भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बने हुए हैं। उनकी अचानक आती बाउंसर का जवाब अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पास नहीं होता। कुल मिलाकर आरसीबी आईपीएल की खिताब की दावेदार तो है, लेकिन उसे दबाव वाले मैचों में बिखरने की आदत से बचना होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले का प्रेशर अलग होता है। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल की शांत लेकिन खतरनाक टीम है। गुजरात टाइटंस को इस आईपीएल की सबसे बेहतर सिस्टम वाली टीम कहा जा रहा है। इस टीम में स्टार खिलाड़ियों की भरमार तो नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझता है। गुजरात टाइटंस की असली ताकत उसका संतुलन है। बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में गहराई, यही उसकी पहचान रही है। टॉप ऑर्डर ने लगभग हर मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दी। मध्यक्रम ने जिम्मेदारी निभाई और गेंदबाजों ने कम स्कोर को भी डिफेंड किया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने अब तक 652 रन बनाए हैं। कप्तान शुभमन गिल भी रन मशीन बने हुए हैं। वे 618 रन बना चुके हैं। गुजरात की गेंदबाजी भी दमदार है। कगिसो रबाडा अब तक 26 विकेट चटका चुके हैं और पर्पल कैप की रेस में हैं। स्पिनर राशिद खान के नाम 19 विकेट हैं। गुजरात टाइटंस की ताकत संतुलित गेंदबाजी और शांत कप्तानी है। वहीं टारगेट का पीछा करते वक्त दबाव में आना कमजोरी भी है। अगर वो इस चुनौती को पार कर लेती है तो खिताब की ओर कदम बढ़ा सकती है। खिताब की रेस में दौड़ रही तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है, जिसकी बल्लेबाजी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आसपास घूमती है। वैभव की आक्रामक शुरुआत बड़े बड़े बल्लेबाजों का हौसला तोड़ देती है। बुधवार तक खेले गए मैच में 15 साल की उम्र में 65 छक्के, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, आईपीएल के इतिहास का नया अध्याय है। अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलता है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 रन का स्कोर आसानी से बना रही है। वैभव बुधवार तक खेले गए 15 मैचों में 680 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप होल्डर हैं। उनके नाम 450 हैं। वैभव के अलावा यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी फॉर्म में हैं और हर मैच में रन बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है, तो वहीं गेंदबाजी में निरंतरता की कमी नजर आती है। जोफ्रा आर्चर 24 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन अकेले जूझते नजर आते हैं। दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पाता। अगर राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल की ट्रॉफी अपने घर ले जानी है तो गेंदबाजी पर काम करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। अगर मौजूदा फॉर्म देखें तो सबसे मजबूत दावेदार आरसीबी नजर आती है,
क्योंकि टीम के पास अनुभव भी है और संतुलन भी। बल्लेबाज फॉर्म में हैं और गेंदबाजों में भी आत्मविश्वास।

आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। अगर मौजूदा फॉर्म देखें तो सबसे मजबूत दावेदार आरसीबी नजर आती है, क्योंकि टीम के पास अनुभव भी है और संतुलन भी। बल्लेबाज फॉर्म में है और गेंदबाजों में भी आत्मविश्वास।